0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद को तो वाड़ा तारो कोई छे नी रे भड़ा तारे डीले प्रेरो खींच लिए कपड़ा
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जा डपड़ा दारो सुड़को मार बयान जल्दी पाड़ा कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा
1: बोल भाई
0: होटो आनान क्या मोटो पीला कांटो काड़ा पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: लेने को हरिनाम, देने को अनदान, चलने को निनता, डूबने को विमान।
1: बोल भाई बोल।
0: जेना डूबदा छजुको मक्कार सरनाई करड़ो ठटरण गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु।
1: देख रे भैया,
0: जेना जुको नानक्यापनो लेन जेना तुकारा महाराज कहगो छ, नानपन देगा देवा, नानपन देगा

0: करना क्यों नो छा? हाँ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभीज कर ले।
1: हाँ वा।
0: अच्छी बातें सुझको आज कर लो, मांदी बातें सवार कर लो।
1: बरोबर।
0: प्रभु रामचंद्र भगवान रावण मारण पार दिनो लक्ष्मण ने मेलो।
1: हाँ।
0: अरे लक्ष्मण राजनीति कूच लानू रे, तो लक्ष्मण ने जो रावण क्यों अरे
1: क्यों?
0: सवार कर रो, आज कर लो, आज करो अबज कर लो।
1: बरोबर।
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो।
1: हाँ।
0: आची व्याते वेर भी तो आज कर लो।
1: खरो बापू।
0: पानी रंग बांध रे पाल।
1: हाँ।
0: मरे रंग जिगल रे काल। तारो डूबे रंग कतुई ढाल।
1: हाँ।
0: तारो बाप बेटो अंग मोटो काल। अरे झल्ली जना मत कर रे हाल।
1: हाँ।

0: बैठा
1: हाँ।
0: पद को तो अपने सिरेरे का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आ रो था डॉक्टर को नाड़ी तपासन जुठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भाई 105 डिग्री ताप चढ़ गो रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री चढ़ गो तो तू डगर जाई छी
1: डगर
0: जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जारो चार नार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस काई करू साहब 1000 रुपया दे दे
1: ई
0: दवा दारू ले जो
1: खानी
0: तू को पद पाल खाटो खरो मत खोग के दिनो ठीक सन के ताणी 1000 रुपया आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तो पील दो 3 दाड़े जामन पील दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी दो हांडी उड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी उड़ा मुंडो को वेगो जो वेगो ढगर को
1: हाँ।
0: ढगर को तो कहती केवड़ी व्यापारी ने कोनी जो
1: हाँ।
0: सारी ताने खाड़ी कराना को चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले था।

0: भाई के मिले छ। अरे भगवाने समझारो पत कुन सोचा
1: कुन सोचा
0: डॉक्टर गने रो पति वेगो खटो खरो न खादो तो ताप लग जा छ। डॉक्टर समझा ज्ञानी श्री भगवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबा रो गाता नौना तुमास्तानी मारे गोपाल कृष्ण 84 तोड़े र वरे पायरी कर बेसर तो पत कुन सोचा
1: कुन सोचा।
0: अरे आपने घरेरी चटनी भाकरी सरला केरी बना दधा केरी। अरे दूसरे घरेरी सिरा पूरी सरखा केरी। अरे आपने घरेर मांद सुंदा नारा तने लागिरे लंगाए पार। अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो जो बेटा संगत करिए जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे तराजुन कांटो। अरे तोला उंदार

0: महाराज घनमोट छ, कबीर दास महाराज के मोलो छ। अरे कहने का कह दिया कितना बजाऊं ढोल,
1: वाह भाई वाह,
0: एक सुहास्तिनी तालाऊं का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरेर मालकन के दी पानी इंदर की
1: है,
0: तो पानी की जन वो तो कोई दी भार ना भाई ना थे दी बोल रहे भी है,
1: हाँ
0: तो तू काई करे ची मार मालकन दी कोई तो बोल रो सा तन घर कुराड़ी आलाई ची वो ना मैं थार कुरूर के
1: खरो खर।
0: अरे वो भाई ना थे दी बोल जे पर तुझको पेटे में कंपला लाई ची अन बेटा कान काटे कुटे कुतरा ना गली गली में हिजरा ना नन्नर नन्नर कर तो हिंडे ची तो ना ला छूटे नी। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी, गरीब माल कर शेर भोजाई लागत है, क्यों मैं भी दूसरे कान काटे कुटे कुतरा ना लोग मारी भी माल कर जबरदस्त भेड़ गो वो काम ओवड़ी चाड़ो मारो ये ओवड़ी चाड़ो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए, दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा श्रम नहीं आए। आपन मालकने रीजत को तो मोट अन गरीबेर का तो नानकीज का बेटा। अरे कीड़ी थी ब्रह्मदेव तुम्हें इज्जत सारक छ कन केन काय।

0: खोटो खामा खामारे गोरमाटी बड़दे परियां सकरेरी गुणी बड़द कड़बीरो धनी अरे तेली रे तेल काड़ाचा बड़देर मालम छेनी
1: वाह भाई वाह रे
0: अरे सड़क खोजाओ गोरमाटी साटा तोड़े वाला गोरमाटी भाटा फोड़े वाला गोरमाटी वावड़ी फोड़े वाला गोरमाटी आणि खोड़ी दिखाओ रे बाटी अरे अत्री अक्कल का छेनी तुम्हारे माई एक जरस मोती वालो क्यों को सेवालाल कबीरदास महाराज क्यों को था अरे सिंधी दारू मत पियो यारो अक्कल गुम हो जाती है पलू का पैसा निकल जाके सिर्फ मुंह में मट्टी आती है रंडी बाजी मत कर यारो अक्कल गुम हो जाती है पलू का पैसा निकल जाके सिर पर जूता आता है जुगाड़बाजी मत खेल यारो अक्कल गुम हो जाती है पलू का पैसा निकल जाके बगल में झोली आती है ये रे सारू ये जलमा अपने घड़ी घड़ी मड़े वालों कावा अरे भाजी पालो कावा ज्यादा धारण खेते में फेलने वे मोड़ू उठे सारू ये रे सारू ये काई करे।

0: अरे परपंच कर रे नेट का कति मत दकाद रे फाटका कामे माई काम हरी नाम रो गुटका पर हरी नाम रो गुटका छेनी रे
1: आओ रे
0: कति तो ई दाता ने हाट अंदर के दोई जोड़ा वाड़ा तो काई करे छ मालखने अंदर से हाट करे ना आठ और हरोगार भ्या भान लेता से साठ वो मालकन काय करे रे आठ रुपया में काय हाट करे गी बागवाने कन क तो दादा ये वेंगन कतरा ना वो बागवान के जाड़ी एक रुपया ना तो ऊपर नहीं उतरा पाले जो बिचारी वो काने वेंगन रस एक रुपया में पाला होता वो र प्रेसी गी कन क तो काले भूर के लारस दादा ये कू यारी बारना ना तो ऊपर उतरा
1: देख रे भैया
0: घरे लियाओ से बेट बेटा धासनाओ से यारी मारी यारी आई मर माता आई छोना गज गटड़ी छचारन केड़ा दस वो छचार पड़े बदन छोलन खाए देख छो छोड़े रांगा का केड़ा को गटड़ी न वाला छ मुंडे साऊ घालेन के तो खैर एकड़ी जादू ऊपर ती सड़े का मातो दास बारनार केड़ा खाई छी खराई छी निर्लजम सदा सुखी आठ रुपया हाट कराई छी साठ रुपया दारू फे छी निर्लजम सदा सुखी छी तू अरे तो न मानस करो तो अक्कल छे नी ढोर करो तो लार पुतरो छे नी ई जलमा अपनो सेवटावळो काव का

एक छटाक तेले माई मावली काय करे रे भा मु करता नहीं ऊंदा इनकी तो एक न दी बूंद पड़ते खमत याड़ी शेज पड़ गए छोरार कावली माई दीज बूंदेर माई हेड भगला तपरच फक्को वच कर जाच हरोदार पानी खान सत्तो पड़ रे छी अन एक दारू तो छूटे नी तू मानस का अरे लार देख साधु संत काय कर गए मोती वालो सदा क्यों गो कोई मारे मनेर म कोनी करो कबीरदास गोरुबा काका सौता माली नरारी सोनार जनाबाई मीराबाई संत सुकुबाई चौका मेला सजन कसाई निवर्ती ज्ञानदेव सो पान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम कबीर कमाल रोजदास अमर नरहरी सोनार गाड़गे बाबा कैकारी बाबा सुदगुरु स्वामी नामानंद बाबा नामदेव कीर्तन करी पुड़े नाचरे पांडुरंग हरि नाचता नाचता गलाला पितामर कबीर मने देवा पितामर आवर मुनेर मुके मायरो बोल छ अरे तू सामलो तो तारो कल्याण वे जाए थोर संताचा महिमा थोर संताचा महिमा।

एकदम सदा सुखी काई के छ। अरे इने काम यनी बेटाउ न अनाज को कीर्तन भजन करते डिग्री ने छ 10 12 रुपया ले ले छ। अब चलो जा, उ चलो जा खोद के बेटा न त काम कर के कळ छ। अरे खोदे न आए कोन ती रे पांच इंगली बरोबर छे नी। हम कते दी आए छ, हमें वैकुंठ वासी, हमें वैकुंठ वासी आलो।

हाथ जोड़ना, नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे, भगवान एक नाम ले लो रे, भगवान रा भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे कहीं पड़े नहीं रे, कहीं कम पड़े नहीं रे तुम्हारे जिनगानी ना।

0: अबा तू केस अरे माटी रोज गीत गायो बाहर को नहीं गीत गायो बाहर तो को मन बुड़का बसा रेर सा अरे सामल कान भरन बाई कुछ को कहीं लागत सा
1: रोज खर्चा।

0: माता तार पेटे माते निकल तार थट्टा कोनी करूं हाँ। ए वेद पुराणे में से वाते सिसु को तन में क्यों
1: हां भाई
0: तारो देव कुण छे वेंडी
1: हाँ हाँ।
0: तारो देव स्वर्गे में छेनी तारो देव पाताले में छेनी तारो देव पूजी पुराणे में छेनी तारो देव कतच जो बाई पति व्रता देवे पर तार सता पति व्रता रो भाव तारो

0: डिलेम देवा आवच हा बाईने डिलेम देवा राहत भगत भी खेलत छन वही खेलत छन ठीक छ
1: करो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखू आवरे भा सरपंच रे बाईर आईनी वाणी गुजर मारवाड़ी बाईर डिलेम देवा आईनी ये सारी दाड़ो भाटा पाड़दाणी काल काबर वेरा आर दाड़े में एकड़ा अंगुली खिरवाड़े डेले डिलेम देव केवड़ी धरसारे वेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ये माया से फसायल छ बाई जको काई करे छ बाई डिलेम देवारो अरे हूँ हाँ करी एक छोरा हेट बैठो तो वो काई की दो बाई डिलेम तो देव आरो उसको लागो 550 रुपया कड़े में खसोड़ मिली छ वो तरा पीसी काली दो को तो कला बाई ने काई कहे वालो छ के देता नहीं कन बैठो उसको छोरा खाएंगे तो घाल देनो पीसी हाथ में काड़े नहीं गयो बाई काई कच गब्बे स्तोन डाकने खाता गब्बे स्तोन मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना काई भी पाड़ेगे तो गब बैठ रहनु पण लबाड़ छ माया बड़ी कटूर छ काट कली दो खावत छ अरे हकीम बिचारो कतकत दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कचरा दुगो कुलचुतो ने
1: का का
0: हजार सूर्या भड़थाणी
1: हां
0: अनु वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हावा
0: को तो हजार सूर्या शक्कर खान हेड पड़ जाते वेंडी आउड़ी बेली देवी तार माई कु घुस जाती वे लबाड लबाड लबाड माटियांग हुबो तो ये छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी ने काय के चरे
1: हां
0: करीना उ काय के लागो मार मालकन मन बलाडी श्री राम आयो याडी मद्दी करू छे एकच वच साटा खोदू एकच वच धूड़ पाडू एकच वच मनद्दी करे याडी या करो हाँ। बेटा हाँ। तारो बरो बर करू बेटा तारो कल्याण करू बेटा तो डबल उनू बेटा वाया की दे जना ये माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की जना सात फेरा भरना यरो माटी हो अब ये डीलर माए आओगे जना ये गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाई दर वेजा है हाँ। तो खिलाड़ी कविता कुम भुकुम ये को टेम आओगे सा वो रे सारू तुगो भगवाने नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नी चौरिया चुका लो

सेवा की दिरे संडलिया माता। अरे तीन दार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेव कने थी। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीन दार थमाई।

0: छोरी व्यक्ति मायरी आतरे भार दखानु तलवारे धार वरो माला कसोते वेंडी
1: कसोवेतो
0: गोड़े ती टांगे छेनी पूरी ती हाथ छेनी केला पासरो दुख कोड्यालो रे कोड्यालो वो कोड्याले ती वाया लागरो वो कोड्याले न काई करे प्रभु कर्म रेशा चुकावे चुकना बाण लागली रे जगजीवना हे कृष्णा मारे नसीबे मारो मारो मालक कालो रो आंधो रो लंगड़ो रो खुलो रो मारे नसीबे मसकन के काई करे ओल्डी बसार ताणी वो कोड्याले उंगली घाल अन पाणन छेटी मेल द अन वो पाणी ने तीन पसी पीवा से बारह वर्ष दारो सेवा की दी
1: वाह भाई वाह
0: बारह वर्ष सेवा की दिए दार बाटी नालती माई बेटी
1: हाँ
0: ये जो को बारह वर्ष पति देव बैठो तो वेशा ना मेरे भाई जो को वर गली माई जा रही थी वो ने देख ली तो अनि लंगड़ो खाई की दो गप से जो को सो गो मालकन बाटी माटी करता नहीं सांडल लिया भाई आई ऊट पति देव बाटी खो खाऊं नहीं मैं का खाए सनी का खाऊं नहीं जो को वसंत ये ले वसंत देख अपने घरे मुंडा गए जो को मखनाई कौन दूटो तो आज एक भाई की भाई रूपवान सा वो भाई सामन ले जो तो मैं बाटी खाड़ो नहीं तो मैं मर जाओ भाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे कि नहीं चिरे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कूनी ती हाथ छेनी कोनी कुचू तो अत्रादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुणस भाई से कहें खो बाटी में जाऊँ छू बाटी खड़ा देनी आर दारे मौलत ले दी अन बाई धूण तानी काली दी अन बाईर घरे मुंडा अगर न मालूम था कहीं करे लागू

गोपाला गोपाला प्यारे नंद लाला पर एक दारू भाई काई की दी ये गोपाला गोपाला करे वाला कौन तक के वन पकड़ी दी काय छोरी काई कर रही थी भाई काई कर रही में कुछ है मन वचन ये लो वचन काई कर रही थी इधर के भाई मारे घरे मुड़ा गए तू गीती के चार दारू गए पछ मारो मालक तो देख ली दो छ वो भाई साउन लेगी तो ठीक नहीं मैं फांसी खान मर जाऊं करे तो यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बेतो कहीं जल में देवाली माता गोरे थी टांगे छेनी कुणी थी हाथ छेनी केवार नहीं पाथरो जेन मारो सोने सिर को क्यों सोने श्री केरी तम भी कहीं करो पगू पड़न कुचू हाथ जोड़न कुचू तुम्हारे नसीबे ना आंदो मलो लंगड़ो मलो खुड़ो मलो आचो मलो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देव कर समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी बाज आए करण के तानी वो माटी ने जो को वचन दिया वो खेला भाई कहीं हरकत छे नी तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूना रो छो कू मेलू ऊकेला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ छ एक आंधी टेमे ने फलाना कोडाओ घर तो आज को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकोवर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डीम घाले तानी भारत जारी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेड़िया छ देव घणु गोपाल कृष्ण घणु खेड़िया छ देव रंगारी रंगारी 16108 नारी भोग